राशियों रामी कहा छापा वाला सुनकर आदमी की जान का तैयारी गढ़ गहना विभिन्न राशि अनुसार का पत्थर हो अगर अनुसार का गढ़ गहना तैयार पार्न पुछाते हरित बिक्री पनि गरिन्छ यहाँ बाट खरीद गरेको गहना बिक्रीमा उचित मूल्य दिइनेछ सम्पर्क बन्केवा कालिका सुनसादी पसल कुनै डुङ्गा बन्केवा छेउ तरफ प्रोपाइटर सुनेदार बाजीराम सुनार र सूर्य दोस मोबाइल 9847 78528 र 9908 16142

Does that make me look bad? राशि चंद्र पार्टी राज्यसभा को उपसभा को जनवासी ने पार्टी सरकार मात्र मात्र राजनीतिक संस्कार परिवर्तन को अभियान बनाने को बताया। सर, बंद कार्यक्रम

0: りをすぐそのサイトするなんてことはパパだから、完璧メディカルハウス。
1: お、頑張りメディカルさん、アブタラソムンディスタブイスディスやアテアドリックメシンバートプリスのデリッディスサイトバッテルフルバートスチャートプランの食事にかかり、チンタビドルのパルベリア。
0: 皆さん、アレクサルナートとスペシャルバー、アラプチャウリバー、アルバイトチャウリコー、コーチー、アーテピックトーチャブタルバルバー、アミトスチェットプラルスタンスキン、エッジャツナカルガンバリスター、サラヨンダサンデルビシャシャシャ、ダツナスソータンキー。
1: お、チャウトソニバー、ドンダピハスピコー、ドンダピハスピコー、オクラバーバスト、ダカン、ダプティドビシャシャシャシャ、ディミスペスタバトコチャット、ディッツァハルソジャンカリバリスター。さて、ポッテリンジョネゾルメディシン、スズンセキルバト、イラニポリチン、オコチャブルエアツバト、ミツビタクスタ。
0: ダンダキメディカルタウン、イレゴダ、マセプステバイ、ウッタキパリ、サンパルカ、スナペスピパスのベッティングセーフリッサポリ、モバイ、アルノベッタリスポリ、シークルスパリッサポリ。モバイサンバンディサンポリシーは、アンバーモバイバンバトカ、バストリキンドア、ブレドラマ。
1: ビジュアルラムソメディキ、トタジロクスキューバーマッサマルピン。ハムロンユバイコシャルタイプシャパパ、ホリゴザ、ホリゴザ。
0: トリゴラタタウンド、タルガラピンドパパシ、ディキシントリアテイタイプンダ、チンチキシャマン、アミカシャパンダ、エリサスマピピドリンサ、
1: アミカパサンシュ、ベティ、ポポポポ、イボーゼミラフォ、アイティエン、パワー、ゲトウドキャパッド、サビステーパル、アンタプタシストバ、ワリティガリットシャータイプサ。
2: हजुर, आकर्षक र मजबूत फर्निचरका सामानको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। तराईबाट ल्याइएको र स्थानीय सालको काठबाट अर्डर अनुसारका सम्पूर्ण सामान तयार गरिन्छ। साथै ढुङ्गा किटी बालुवा सहित ढुवानीको लागि ट्याक्टर चाहिएमा पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क सुभिक्षा फर्निचर उद्योग, दुलेगौडा पौवाटारा, पञ्चमुनि स्कुल माथिपट्टि, प्रोप्राइटर हरिबहादुर विश्वकर्मा। मोबाइल 9811435322।
3: विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, आज म तिमीहरूलाई धूम्रपानको बारेमा पढाउँदैछु। ध्यान दिएर सुन है।
4: मेडम, धूम्रपान भनेको के हो?
3: ल सुन, धूम्रपान भन्नाले खास गरी सुर्तिजन्य पदार्थको धुवा खानु हो। चुरोट, बिडी, तमाखु, कक्कर जस्ता सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्नु हो। धूम्रपानको धुवामा 7000 भन्दा बढी किसिमका रासायनिक तत्व पाइन्छन्। तीमध्ये 69 भन्दा बढी तत्वले क्यान्सर गराउँदछ।
4: अनि धूम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्दा कस्ता कस्ता असर देखिन्छ?
3: धूम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्दा मुख, फुक्सो, पेट, थियो, आन्द्रा, मुत्रनली, पाठीघर आदिको क्यान्सर हुन्छ। दम, दीर्घ श्वास प्रश्वास रोग, उच्च रक्तचाप, हृदयघात, मस्तिष्क घात, गर्भवतन हुने, कम तौलको बच्चा जन्मने, अवधि पूरा नभई बच्चा जन्मने, मृत बच्चा जन्मने आदि गराउँदछ। त्यति मात्र कहाँ हो र, धूम्रपानको धुवाले धूम्रपान नगर्ने व्यक्तिलाई समेत असर गर्दछ। नजिक बसेकै कारणले विश्वमा वर्षेनी 6 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ।
4: अनि नि मेडम,
3: यो धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थबाट बस्ने उपायहरू पनि छन् कि छन् नि यसबाट बस्ने उपायहरू साथी भाइको लहै लहैमा नपर्ने दीर्घकालीन असरको मनन गरी क्लबमा नपस्ने धुम्रपानबाट छुटकारा पाउनको लागि स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह लिने सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान नगर्ने र घरभित्र अनि बच्चाको अगाडि कहिल्यै धुम्रपान नगर्ने धुमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थबाट टाढेको छौ आफू बचौ र अरूलाई पनि बचाऊ
5: हजुर हामी कहाँ छ

आईटी हासिल धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र बदलना सुपर हिट आर्शीवालय विकास करने तपाईको सानो सहयोग।

0: बज्दछ।
1: अनुरोध: गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा।
2: एक सय तीन थोप्लो आठ
3: अन्तर्मनको आवाज।
4: स्टुडियो लाइट अहिले रातिको आठ बज्यो।
5: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल, दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक, अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन, अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साटफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार, विनोद सुनार, मोबाइल 9816395301।

0: 103.8 अन्तरमनको आवाज
1: स्टुडियो साइट अहिले बिहानको 5 बज्यो।
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165-95301।
0: Next 18 people.